सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम,
0: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सेवा के अति में नहीं जाओ, बस मेरी कोई करनी है, मैं ही कर सकती।

0: अनहर बात बहुत अच्छा मसाज करेगा। अमाता ऑडियो फ्रेश हो थकावट नहीं होगी, एनर्जी एक्स्ट्रा आएगी।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जी जी

0: Jesús rico, digna.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: Serie con Sebat e Marvin. Lekin Jesse Shastrom
1: Full button.

0: दूसरियों पर रहम कर उनको मुक्ति धाम में तो भेजो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Πεζίρακο. Τσάι μάτσα σε βασέ. Τσάι φάτσα σε. Manan Shakti Manako Ekagar Bana Deti Koi Koi Bache Manan Chak Karte Bhi Lekin Manan Shakti Ko Bhi Sare Din Mein Bada को लास्ट बच्चे से भी प्यार

0: Scorpy. Pop Dada. Şehzade. Sadıcıl. Rerecel. Piçe piçe. Nairecel.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बच्चों

bunny. Supposed to.

的夜晚，奈瓦拉斯基 gift， 塞乔杰。लेकिन अमृत वेले का ये वरदान पसंद है, पसंद है, करते तो हो, लेकिन बाप दादा की तरफ से विशेष संयोग सने शक्ति प्राप्त होगी। ठीक है,

जो बीच में कोई ना कोई सरकमस्टेंस आती है, उसके लिए इस वर्ष में संतुष्टता की शक्ति विशेष कार्य में लगा check.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: So

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है कि निरंतर याद के लिए एक विधि बनाओ, सारे दिन में दो शब्द सभी बोलते हो और अनेक बार बोलते हो, वो दो शब्द है मैं और मेरा। तो जब मैं शब्द बोलते हो तो बाप ने बड़ी चेत दे दिया है कि मैं आत्मा हूं। तो जब भी मैं शब्द बोलते हो तो ये याद करो कि मैं आत्मा हूं। अकेला मैं नहीं, सोचो मैं आत्मा हूं, ये साथ में सोचो, क्योंकि आप तो जानते हो ना कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, परमात्म पालना के अंदर रहने वाली आत्मा हूं। और जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कौन, मेरा बाबा अर्थात बाप परमात्मा। तो जब भी मैं और मेरा शब्द कहते हो उस समय ये एडिशन करो, मैं आत्मा और मेरा बाबा। जितना मेरापन लाएंगे बाप में उतना याद सहज होती जाए, क्योंकि मेरा कभी भूलता नहीं है। सारे दिन में देखो मेरा ही याद आता है। तो इस विधि से सहज निरंतर योगी बन सकते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

चुकी सारे दिन में।

진짜.

regnete.

Oh yeah.

prochaine.

संकल्प द्वारा छोड़ सकते।

Chuchur.

उसके लिए बाप दादा फिशिंग

हरी किरण आज जो भी

Rede sein.

三

संकल्प आज का अगर किया तो आज का दृढ़ संकल्प करने में आप हर एक को एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। Son.

Ocean.

Ma

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: विश्व परिवर्तन करना है ना, क्या याद रखेंगे? याद रखा मन से, शब्द याद रखो बस, क्योंकि आपके चरचित्र क्या देते हैं, दुआ देते हैं ना, मंदिर पे जाते हैं तो क्या मांगते हैं, दुआ मांगते हैं ना,
4: जन्म में भी

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सेवा के साथी पाप तो सकाश देने वाले हैं, लेकिन साथी कौन? साकार का साथ तो परिवार का है। तो पाप ने देखा है कि तीन निश्चय में मेजॉरिटी ठीक चल रही है, लेकिन परिवार के साथ में निभाना, संस्कार मिलाना, एक एक को कल्याण के भावना से देखना और चलना, इसमें कई बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। लेकिन बाप ने देखा कि जो परिवार के निश्चय में नॉलेजफुल होगी, सदा बाप समान साखी बन के स्थिति में साथ में आते हैं, रहते हैं। वही नंबर वन या नंबर वन डिवीजन में आता है। तो चेक करो भाव स्वभाव परिवार में होते हैं। जो भी छोटी छोटी गलतियां होती है, विघ्न आते हैं, वो परिवार के संबंध में ही आते हैं। तो सबसे आवश्यक इस परिवार के संबंध में पास होना आवश्यक है। अगर परिवार में चलने में, तोड़ने बहाने में कोई भी कमी होती है, तो वो विघ्न छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन तंग करता है। ये क्यों, ये कैसे परिवार के कनेक्शन में आता है? तो क्यों के बजाय क्यों नहीं करना है, लेकिन हमें मिलकर चलना है, परिवार की प्रीत निभानी। क्यों कि ये बाप का परिवार है, भगवान का परिवार, रवासी परिवार नहीं। नशा रहना चाहिए कि वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं और वाह परिवार।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: या उनको भी fois.

hacerle. Siempre va.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सब ठीक, आराम से रहे हुए हो? मन भी आराम में, धन भी आराम में, दोनों ही आराम है ना? आप मुस्कुराओ, सीरियस नहीं रहो। अब तो सब मिल गया, बाकी क्या जी? नाचो गाओ, मुस्कुराना अच्छा लगता है ना? ऐसे अच्छा नहीं,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

लिए आवाज सुनाई नहीं देता, लेकिन पापा को सभी का आवाज पहुंच रहा है। बाप दादा भी रेस्पान में कह रही है, वाह बच्चे वाह, हर एक के दिल में कौन सभी क्या कह रहे मेरा बाबा, ये गीत तो सुना है ना बाप बच्चों का। बाप कहते हैं मेरा बच्चा, हर बच्चा कहते हैं मेरा बाबा, कितना मीठा आवाज। बस मेरा जो कह रहे हैं ना, उसकी कमा

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सभी खुश राजी और कदम आगे बढ़ाने वाले फर्क है।

चाहिए।

बच्चों

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सेवा, वाचा सेवा।

las han hecho por puro

0: कोई मांगे नहीं मांगे। लेकिन दादा कभी ये नहीं देखता, ये मांगे तो थे
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सबको बिंदु रूप में देखना है। जब देखेंगे ही बिंदु, तो और कोई भी संकल्प नहीं चले। मत्सा सेवा का अटेंशन रखना इतने दुखी आत्माओं को चिल्ला रही है। उन्हों को गिरना देने की सेवा में फायदा और आपका अपना भी फायदा, डबल फायदा।

0: Let's see.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: संगम युगपत ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सिर्फ जब सेवा में कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो ना तो साथ भी भूल जाते हो और फिर थक जाते हो, फिर बापू याद करते हो थक गए अभी क्या करे, थको नहीं। Nature.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सने नहीं, आप सबको नई जीवन दिए। हर एक बच्चे को सने की शक्ति ने बाप का बनाया। सने की शक्ति सब सहज कर देती है। जब सने में समा जाते हो तो कोई भी विषय

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब भी माया कोई विकराल रूप में भी आवे, क्योंकि हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो, और माया भी सोचती है कि ये जान गए, लेकिन कोई का खेल होता है ना, देखा है कि देखा है या बच्चे करके दिखाते हैं, तो सब समझो कि ये का खेल रही है। अच्छी तरह से मारो, घबराओ नहीं, खेल है तो साक्षी होगा, खेल करने में मजा आता है। और माया आ गई तो घबरा जाते हैं, कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है, सिर्फ बातें ऐसे होती है, जो अज्ञान काल में नहीं होंगे लेकिन ज्ञान के बाद होगी। अज्ञान काल में कभी बिजनेस नीचे ऊपर नहीं हुआ होगा, अज्ञान में आने के बाद हो गया। घबरा जाते हैं, ज्ञान छोड़ दिए, लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए समझो तो परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियां के अनुभवी बना। एक सहन शक्ति न्यारपन नष्ट हुआ और दूसरा सामना करने की शक्ति का कि आगे के लिए आप सीख लो। तो ये परिस्थिति, ये तो पाठ पढ़ाने आई है। घबराते हो ना तो माया समझ जाती है कि ये कमरा तो गया है, मारो अच्छी तरह से।
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी क्या याद रखा, कौन सी बात को अंडरलाइन किया, बेहद का फेरा, आत्मा को इच्छाओं से बचाओ, बहुत बेचारे दुखी है, बहुत परेशान। तो अभी रहम दिल बनो, रहम की लहर बेहद के फैराग फिर ती द्वारा फैलो। अभी सभी साथ ऊंचे थे ऊंचे परम धाम में बैठ, बाप के साथ ये सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि तो वाइब्रेशन फैलाओ, फैला सकते है ना, तो बस अभी परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ। वहां से ये बेहद की रहम का वायु

пить, пить.

लक्ष्य रख।

conoscopi. But not.

be you.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: हाथ उठाने में तो होशियार नहीं, बाप दादा खुश खुश हिम्मत तो रखी ना, तो हिम्मत है बच्चे शरत

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जाती

0: set queen for Shungu. Janwar ko adat dal do apne ghar mein aane ki. Phir tang ho ke bhagao bhi. Lekin adat to par jaati hai. Aap aapne sunaya tha ki kahi bachche to maya ko chai pani bhi pilate chai pani kaun si pilate ho kya karun kaise karun abhi to purusharthi abhi to sampurna nahi bane a karo jayenge ye sankalp Yeah. इसका साधन है। सुनाया एक तो
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: Papa. शनि की शक्ति में रहो तो सदा के लिए मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। वैसे भी मुक्ति वर्ष मना रहे हैं ना, तो मेहनत से भी मौत उसका साधन है। शनि में समाया हुआ रहे, शनि का अनुभव सभी को है ना कि नहीं है? अगर किसी से भी पूछेंगे कि बाप से, बाप दादा सिस्टर सबसे ज्यादा किसका है, सभी हाथ उठाएंगे मेरा है, ऐसे ना है ना? है। पीछे वालों का भी है हाथ उठा रहे, साइलेंस का हाथ उठाओ, आवाज वाला नहीं है सबका। तो बाप दादा आज की कहती है शनि की शक्ति सदा कार्य में लगाओ, सहजना योग लगाते हो भूल जाए, देखी दुनिया भूल जाए, माया जीत बने। जब शनि की चंद्र छाया में रहेंगे, शनि की चंद्र छाया की अंदर माया नहीं आ सकती। शनि की साखट से बाहर आते हो ना तो माया लेती है और अपना बना देती है, निकलो ही नहीं, समाये रहो। शनि ही कोई भी कार्य करते हुए शनि को नहीं भूल सकता, शनि में खोया हुआ हर कार्य करता। जैसे आज के दिन कोई रही ऐसे सदा सने में नहीं रह सकते हो क्या? morning. Someone said for nothing. You just kiss that son here. What's just happening now? ये मुश्किल नहीं होता.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम. सत्यम शिवम सुंदरम.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: स्वचिंतन इसको नहीं कर जाते, सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट करना या ज्ञान की पॉइंट्स को
2: होती है, लेकिन
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
2: यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सिक्किया के साथ सने भी देना, जिससे वो सने के आधार से अपने को आगे बढ़ा सके। ऐसा सने नहीं देना जो वो सने का लाभ उठावे, जो भी करो बाफिर। ऐसा सने नहीं देना बाप दादा खुश है छोटे मित बने हैं, अटेंशन देते भी हैं, लेकिन और अटेंशन देंगे, संतुष्ट भी करो और विश्व को संतुष्ट पहुंचे। ये भी कार्य निमित्त वालों को करना है। उसका कारण कि जो निमित्त है उनों को अपने अपने हैंड्स के संस्कार परिवर्तन कराने में थोड़ी मेहनत करनी पड़े। सेवा कराते हो, रहने खाने का प्रबंध मेजॉरिटी सेंटर देते, लेकिन उनों में शक्ति ऐसी बढ़ो जो बाप से शक्ति ले आपके सेवा स्थान का वायुमंडल ऐसा बनाए जो भी आवे वो पहले तो वायुमंडल के आकर्षण में आ जाए। क्योंकि आजकल सब यही चाहते हैं कि ऐसे कोई कार्य हो जो आने से ही अनुभव हो कुछ, देखने से ही अनुभव हो कुछ, सुनने का अनुभव होता है। योगा

जो भी

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने सुनाया था कि चाय दादी के लिए कहेगी ऐसे कि पेशेंट से पूछेंगे कहेंगे कुछ नहीं है, तो ये पेशेंट नहीं है। पेशेंट स्वरूप दिखा रही बीमारी भी है लेकिन न्यारी और प्यारी मन चल रही है वो अपने मस्ती में। ये प्यूरिफाई शरीर से अपना लास्ट स्टेज और भविष्य अष्ट देवता प्रसिद्ध होना और भक्ति में इष्ट देव बनना, तीनों ही संस्कार पाठ बजा रहे सेवादारी सेवा करते हैं वो भी दिल से कर रहे हैं, लेकिन कोई सारे परिवार ब्राह्मण परिवार में भी सिर्फ होनों के लिए नहीं है, वो तो दिन रात अपने दिल से कर रहे हैं, लेकिन कोई भी वेस्ट थॉट्स भी नहीं चला।

0: 喂。
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा सदा कहती है, कितने भी बड़े हो, उनके पास पावर है, आपके पास परमात्मा विल पावर। परमात्मा ने विल की है पावर्स की, विल पावर। तो परमात्मा विल पावर के आगे पावर्स परिवर्तित होना कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ स्वयं में एक संकल्प होना ही है। ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, ये परमात्म टच
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप और बच्चों का एक दिवस जन्म, यही वंडर है। तो आज आप सभी सालिग्राम बच्चे बाप को मुबारक देने आई हो। बाप से मुबारक लेने आई हो। देने भी आई हो, लेने भी आई हो। साथ साथ की निशानी है कि आप बच्चों का और बाप का आपस में बहुत बहुत बहुत स्नेह। Saat-saat

Yes.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: तो आज के दिन फरश को

सकते हो, हाथ उठाओ, देनी पड़ेगी। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन मन का हाथ उठाना उठा रही है, पुराने संस्कार को

सभी बच्चों को चाहे या सन्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे हैं।

tetapi bab tetapi mane man me dance kare eva manjim.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: शुभ भावना, शुभ कामना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में सिर्फ वाय नहीं आवे, स्वयं शुभ भावना शुभ कामना के तो इतने पावरफुल है जो किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हो। अच्छा बदल नहीं सकते हो। सेकंड नंबर, अगर आपकी शुभ भावना शुभ कामना अविनाशी है, कभी कभी वाली नहीं अविनाशी है, तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता। क्वेश्चन में चले जाते हो, ये क्यों हो रहा है, ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा। इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती, नहीं तो शुभ भावना शुभ कामना इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है। देखो, आप सभी आए बाप

0: मास्टर सर्वशक्तिवान हो, दिल तख्त नशीन हो, ये शुभ भावना रखी ना, शुभ कामना रखी ना, उससे ही तो बाप के बन गए ना। बाप ने कहा, ये पापी क्यों आए हो, शुभ भावना रखी मेरे बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे। जब बाप ने आप सबके ऊपर शुभ भावना रखी, शुभ कामना रखी, तो आपके दिल ने क्या कहा, मेरा बाबा। बाप ने क्या कहा, मेरे बच्चे। ऐसे ही अगर शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा, मेरा कल पहले वाला मीठा भाई, मेरी सिकिलदी बहन, परिवर्तन हो जाए।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Savoir.

Edgar.

इसमें अटेंशन देना है, इसके हाथ उठाओ। सुबह को उठते ही ये बाबा शब्द याद कर, पाप देखे

हुआ शब्द बोलना नहीं, ये सभा में हाथ उठाया ये बोलना नहीं,

0: वाह शब्द याद रखना, अगर कभी मूड ऑफ होना वाह शब्द।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा को खुशी है कि हर बच्चा चाहे सिंधी है चाहे हिंदी है, लेकिन हर बच्चा खुश रहता है मेजॉरिटी, ये देख के बाबा बहुत खुश होता। खुशी कभी नहीं कमाना, बात होती है लेकिन बात हमारी खुशी क्यों ले जाए। खुशी हर एक ही अपनी चीज है, वो कभी नहीं जानी चाहिए। बातें आती है, वो भी पेपर आता है, तो जो बच्चे अच्छे पुरुषार्थी है वो पेपर में सदा पास होते, उनके लिए पेपर कोई बड़ी बात नहीं है। ही रेडी
2: ठीक है तो।
1: ऐसे रेडी रहने वाले की निशानी ये है कि उनके शिकिल पर सदा खुशी की लहर दिखाई देती। कितनी भी बातें हो जाए, क्योंकि डबल संबंध में रहते हैं, लौकिक में भी है अलौकिक में भी, लेकिन जो सदा खुश रहते हैं वो आगे से आगे कदम बढ़ाता रहते, और बाप उन बच्चों को देख सुखम में उनके ऊपर दिल का प्यार अवश्य होता है, जो उनको भी महसूस होता है बाबा का प्यार मेरे से। ऐसे दिल खुश बच्चे बहुत है और सदा ही खुश रहेंगे, जो नहीं भी है तो भी सदा खुश रहेंगे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी समय पर मान सबको बेहद के वैराग वृत्ति में जाना ही होगा। समझती है कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने, जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, ये समय शिक्षक बनाना। माँ बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया, बेहद की वैराग आद से अंत तक रहा। भोलेनाथ का भंडार, नसीह मेरा समझ कर पर्सनल अपने वृत्त एक रुपए की चीज यूज की कि कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी फिल किया कन्याओं माताओं को मेरा पन नहीं उसे भी बेहद किए फेरा की रहे इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते हुए भी एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया सदा साधारण लाइफ में रहे कोई स्पेशल चीज अपने कार्य में लगाई वस्त्र तक एक ही प्रकार के वस्त्र अंत तक रहे चेंज किया बच्चों के लिए सुनते हुए उपराम रहे सदा बच्चों को सने देखते हुए भी ये शब्द रहे सब बच्चों के लिए तो इसको कहा जाता है बेहद की फैराग वृत्ति प्रत्यक्ष जीवन में रही देखो बच्चे सामने है हाथ पकड़ा हुआ है लेकिन लगा रहा की फैराग फिरती सामने होते हुए बच्चे और सनई बच्चे अन्य अन्य बच्चे बेहद का वैराग रहा। सेकंड में उपराम फिरती का बेहद के वैराग का सबूत देखा। एक ही
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा को सबसे समीप रतन वही लगता है जो सफाई और सच्चाई में दिल साफ और सच्ची दिल वो बच्चे चाहे कितना भी दूर हो लेकिन ऐसे तो सा

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yeah. जमा हुई शक्तियां व्यर्थ चली जाती, इसलिए शुभ चिंतन की स्वमान की कोई न कोई अपना टाइटल मन को होमवर्क दे दो। मन का टाइम टेबल बनाओ, कर्म का तो टाइम टेबल बना दे, बनाओ स्वमान अमृत वेले मिलन मनाने के बाद मन को दे दो, लेकिन जैसे வாயுமன்னர் பத்தல் நாய் ஜெய்
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कई बच्चे कहते हैं हम तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्राप्ति नहीं होती। उसका कारण वरदान सबको एक है कि दूसरा दूसरा एक ही है ना। 60 साल वालों को भी एक, तो 1 मास वाले को भी एक। खजाने सभी को एक जैसे, पालना सबको एक जैसे, दिनचर्या मर्यादाएं सबको एक जैसे। दूसरी दूसरी तो नहीं है ना, ऐसे तो नहीं कि विदेश की मर्यादाएं और इंडिया की और, ऐसे तो नहीं है। थोड़ा थोड़ा फर्क है, नहीं है तो जब सब एक है फिर किसको सफलता मिलती है, किसको कम मिलती है, क्यों? कारण बाप मदद कम देता है क्या है? किसको ज्यादा देता हो, किसको कम? ऐसे है नहीं है, फिर क्यों? सफलता को देखा कभी कभी ईर्ष्या भी आ जाती है। वो ईर्ष्या जो दिल से सेवा करनी चाहिए वो दिमाग से करती है लेकिन दिल से नहीं। और फल मिलता है दिल से सेवा करने का, लेकिन कई बार बच्चे दिमाग चूज़

0: जो दिल से करते हैं तो दिल से करने वाले को पाप की याद भी दिल में रहती, सिर्फ दिमाग से करते हैं ना। थोड़ा टाइम दिमाग में याद रहेगा, हाँ पापा ही कराने वाला है, हाँ पापा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वही मैं बना। इसलिए दिमाग और दिल दोनों
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: क्रोध आने का कारण मेजॉरिटी देखा गया है कि गाना का ईशा और साथ में कुछ भी देख करके चलते हुए फेस्ट थॉट्स का बीज भी क्रोध को लाता है, क्योंकि फेस्ट थॉट्स है बीज। इस बीज से क्रोध भी उत्पन्न होता है और इसका एक शब्द निमित्त बनता है। उस एक शब्द को, बीज को अगर खत्म किया तो सहज हो जाएगा। वो एक शब्द है, क्यों? ये क्यों, ये क्यों हुआ, ये क्यों किया, ये क्यों करते हैं? इस क्यों शब्द की बड़ी क्यों है। और देखो, क्यों शब्द इंग्लिश में लिखो कितना मुश्किल है।

0: यही चाहते हो ना कि जल्दी जल्दी वार्धक्यता का झंडा सबके दिल में ले रहे, तो इसका कारण क्यों, क्या, कैसे हो?
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा, समय पर हर एक बच्चे से ये शुभ आशा रखते हैं कि पंद्रह दिन के बाद फिर बाप का मिलना होता है। तो ये जो 15 दिन बीते, उसमें ये विशेष अभ्यास करो ट्रेल के लिए। रहना तो सदा है, लेकिन 15 दिन की ट्रेल करो और अपने अपने कनेक्शन वाले सेंटर्स को भी कराओ। चक्कर लगा के फोन करते उनको याद दिलाओ कि होमवर्क कर रही हो। होमवर्क क्या है? इसी है, हर एक बिना बिना सरकमस्टेंस पाते सिंक्रास्ट तो करते ही।

बाप दादा 20% छुट्टी देते है मंसूर, मंसूर है देवे, ये काम देवे। अच्छा 15 दिन माया भी सुन रही है, बातें तो आएंगी, बातें को नहीं देखना, पास होना है ये याद रखना। 15 दिन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाप दादा के पास हर एक सच्ची दिल

स्टेटस बताओ। हो सकता है 15 दिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाप दादा ट्रेल के लिए संकल्प भी वेस्ट नहीं। युद्ध नहीं विजय, 15 दिन के फुल विजय मुश्किल है कि इजी है। हाथ उठाओ, इजी है। बाप दादा ये 15 दिन के रिजल्ट देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। 15 दिन तो कोई भी कर सकती है ना। 80% लेना ही, फिर भी बाप दादा हल्का कर रहा है, 20% छोड़ रहा है। क्यों बाप

0: चलते चलते माया अलबेला और आलस रायल आलस ये रायल आलस अलबेलापन
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को भी कोई

0: para infartarle. Ach. Mana que cuchillé. Kitna karcha karte. Kitne manoranjan ke. साधन बनाते वो है अल्पकाल के साधन और आपकी है सदा काल की सच
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: So

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: झूले में झूलती है, झूलते है ना। माताओं को बहुत नशा रहता है। क्या नशा रहता है? हमारे लिए पाप है ना नशा। तो आप से सभी ने नीचे गिराया, इसलिए बाप को माताओं पर बहुत प्यार है। और खास माताओं के लिए बाप आए। अच्छा खुश हो रहे हैं, सदा खुश रहना। ऐसे ने अभी हाथ उठा रहे हैं और ट्रेन में जाओ तो थोड़ा थोड़ा नशा उतरता जाए। सदा एक का रस अविनाशी नशा हो, कभी कभी का नशा नहीं, सदा का नशा। अगर माताएं
4: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: रेडियो यहाँ है खुशियों का संगम।
1: एक मत होना अर्थात सफलता, सफलता आप बच्चों का हर एक का जन्म सिद्ध अधिकार, उसको यूज कर।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कुमार भी कम नहीं है। कुमार अभी सुकुमार बन गए हैं। और कुमारों के बिना से

0: Charles Patau, komárom, képen a szintre Charles Hotel. Nagy Charles. Komár. Képesíta égbohat a csíje. Komár. Csodrát szakalap kari. Vo practical me la sota. Kyo kso kumar. Ulta to karenge nahi, sulta hi karenge. To kumaro me. Dhrat sankalap ki gift hai. अभी बाप दादा की ये इशारा प्रैक्टिकल में नहीं लाया, सारे विश्व के कुमारों का ग्रुप मधुबन में इकट्ठा हो और प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर यहाँ आवे, कुमार अपना जलवा दिखा सकते, कुमारों का ऐसा ग्रुप साथ ले जाओ, कोई कहाँ का कोई कहाँ का कोई कहाँ का, और डायरेक्टर ने मंत्रण देवे सब देशों के हो और निमंत्रण देवे डेट फिक्स करे। कुमारों में तो बाप दादा की बहुत बहुत बहुत शुभ उम्मीदें हैं और पूरन होनी है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जितना प्यार है ना, उतना साथ में प्यार भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। अभी शक्ति को बढ़ाओ।

0: Pipi, coipi, bene, apne ko sarv shakti nahi, shiv shakti samjho. Shiv shakti, paap saath hai. पांडवों से पांडव पति सत तो अभी क्या करेंगे जो बाप दादा ने कहा है पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द लगाओ वायुमंडल बनाओ एक दो किस सहयोगी बन हर एक अपने अपने स्थान पर रहते हैं स्थान को शक्तिशाली बनाओ साथियों को शक्तिशाली बनाओ तो क्या करेंगे अभी नवीनता करेंगे ना जब मेरा बाबा कहते हैं तो मेरे जैसा बनना तो पड़ेगा ना हर एक अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो संकल्प अच्छे अच्छे करते हो अमृत वेले बाप दादा देखते हैं संकल्प अच्छे करते हो ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे लेकिन जब कर्म योगी बनते हो संबंध संपर्क में आते हो उसमें फर्क हो जाता कर्म योगी की स्थिति उसमें अटेंशन ज्यादा जाए
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो यहाँ है खुशियों का संगम

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कुछ भी सेवा करो, चाहे जिज्ञासु कोर्स वाले आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं से संतुष्ट रहो, निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूं तो आज नहीं तो कल ये मैसेज काम करेगा, करना ही। हिसाब किताब में जमाओ और उन्हों को भी संदेश मिल गया तो टाइम सभी को आना ही है, इसलिए और कोई है क्या जिसे योग है और सदा रहेगा, बाकी कोई सीजन का फल है, कोई हर समय का फल है। श्रीमत परमान कार्य किया, इसीलिए श्रीमत को मानना ये भी एक सफलता है। पढ़ते जाओ करते जाओ और पश्चाताप कर आपके पाँव पर पड़ी, जो आपने कहा हमने नहीं माना, यही आप दिव्या बनेंगे, आपके पाँव पर पड़ेंगे, तभी तो भक्ति में भी पाँव पड़ेंगे। तो वो टाइम भी आना है जो सब आपके पाँव पड़ेंगे, आपने कितना अच्छा हमारा कल्याण किया।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अच्छा भी रुआ ने ट्रल याद है, एक सेकंड में suck।

अपने पन का एहसास, अमर है बाबा तेरा मेरा प्यार, युग युग में ना छूटे बाबा बस तेरा साथ।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Mama.

Salir.

Yo quito.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आजकल चाय संसार में, चाय ब्रह्मांड संसार में हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार, मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं, एक सच्चा प्यार और दूसरी हिम्मत। मानो 95% किसने संस्कार के वश परवश हो गए, नीचे ऊपर कर भी लिया, लेकिन 5% अच्छा किया। फिर भी अगर आप उसकी 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो, ये बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो बाकी ये ठीक कर लेना, उसको फील नहीं होगा। अगर आप कहेंगे ये क्यों किया, ऐसा तो नहीं किया जाता है, ये नहीं करना होता है, पहले ही बेचारा संस्कार के वश है, कमजोर है, तो वो नर्वस हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं कर सकता। 5% की पहले हिम्मत दिलाओ, ये बात बहुत अच्छी है आप में, ये आप बहुत अच्छा कर सकते। फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर बात देंगे तो वो परिवर्तन हो जाएगा। हिम्मत तो परवश आत्मा में हिम्मत नहीं होती, बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया, आपकी कमी सुनाई, आप भिखारी हो, आप गंदे हो, आप ये हो का, आपको समृद्धि दिलाई, आप आत्मा हो, और इस श्रेष्ठ समृद्धि से आप में समृद्धि आई, परिवर्तन किया। हिम्मत से समृद्धि दिलाओ, समृद्धि समृद्धि सुतई दिलाएंगे, समझा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

ಜಲದ ಸಂಕಲ್ಪ.

0: Este neka. Το φιέρατ σαν καλαπκό. Σαμάπατ καρνά.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आपस में राय सलाह जल्दी करो, समय लग जाते हैं ना, तो वक्त भी थोड़ा कम हो जाता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई बच्चों का बाप दादा माना के संकल्प रीड करते हैं, कई बच्चे समय अनुसार सरकमटेंस अनुसार
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

二十四节了。Second me， 加州 ，Farmer Luck Jay， 这个 Jay， 也 exercise 过了。

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाबा एजुकेशन का छपा है और यूथ का छपा है,
2: यूथ
1: और एजुकेशन,
2: एजुकेशन चलो
1: सभी का भी छप रहा है कहते हैं, मिला जुला
2: छपना चाहिए क्योंकि कोई भी आते हैं तो लाइब्रेरी में ऐसे ऐसे किताब होने चाहिए जो कोई भी और हर वर्ग का पढ़ने से प्रभाव पड़ता है, कई समझते हैं कि कर्म करते हुए ड्यूटी संभालते हुए कुछ हो नहीं सकता है, तो वो लोग उमंग उत्साह में तो जब ये बने हैं तो हम
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: उसमें मिलके नमाज के लिए ऐसा फर्क निकालो जो सभी बिजी हो जाए उसमें, रिजल्ट आती रहे। और चीखिक भी हो अगर नहीं करते हैं तो क्यों, अलबेलापन है तो उनके ऊपर सने से सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि समय तीव्रता से समय पारा तो ऐसा कोई प्लान बनो, कोई ना कोई वर्क इंटरेस्ट का निकाल के सबको बिजी रखो उसमें। ठीक है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अगर आपके दिल में छोटी छोटी बातें बड़ी नहीं होती है, होती छोटी है, लेकिन छोटी छोटी बातें इकट्ठी होके दिल तो भर जाती है ना, उनसे खाली तो नहीं रहती ना। तो दिल खाली नहीं तो दिल आराम कहाँ बैठेगा, कहाँ बैठने की जगह तो कि नहीं। इसीलिए बाप दादा उस नजर से आपको नहीं देखेगा, लेकिन सच्ची दिल और दूसरा कहता सदा बुद्धि की लाइन के लिए लाइन में डिस्टर्ब नहीं हूं, कट ऑफ नहीं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Jason Burr.

Musique.

அப்படி மாப்பா பார்க்கணும்.

0: Murat Bele. 11 kila de bachon ko jo falo karne wale hono ko vishesh yaad pyar de de va bache va
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: समंद में आओ, ऐसी कहावत है ज्यादा मीठे पास चींटियां बहुत आती, इतना इसी भी नहीं, लेकिन डबल लाइट रहेगा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: इस चाबी को संभाल के रखना दृढ़ता ही सफलता की चाबी, और सफलता पाप के समान बनने सहज साधन। सदा निश्चय और निश्चित भावी है, स्वराज अधिकारी और विश्वराज अधिकारी, ये दोनों निश्चित है। ऐसे नशे में फखर में सदा उड़ते रहो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Resica.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

Junk.

el ano.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: हिम्मत नहीं छोड़ना, एक कदम आपके हिम्मत का और हजार कदम बाप के मदद का है। अनुभव करके देखना, हिम्मत नहीं हारना, दिल शिकस्त नहीं होना। सर्वशक्तिवान के बच्चे दिल शिकस्त नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना, दृढ़ संकल्प करना, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: क्या धन मन

Oh yeah.

0: सब एक शब्द याद करो मैं परमात्म आज्ञाकारी बच्चा बाप की ये आज्ञा है या नहीं है वो सोचो जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वो सदा बाप को सुतई याद होता है सुतई प्यारा होता है सुतई बाप के समीप होता है तो चीख करो
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आजकल के हिसाब से दवाइयां खाना ये बड़ी बात नहीं समझो, क्यों कि कलयुग का वर्तमान समय सबसे शक्तिशाली फ्रूट ये दवाएं हैं। देखो कोई रंग बिरंग की तो है ना, ये तो एक कलयुग के लास्ट का ये फ्रूट है, तो खा लो प्यार से। दवाई खाना
0: रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

बहुत सहज विधि पहले भी बताई है, इसमें और मेरे को परिवर्तन करने याद है। देखो जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो ना, उस समय सामने मैं हूँ ही आत्मा। मैं शब्द बोलो और सामने आत्मा रूप को लाओ। मैं शब्द ऐसे नहीं बोलूं, मैं आत्मा। ये नेचुरल स्मृति में लाओ। मैं शब्द के पीछे आत्मा लगा दूं, शब्द बोलते हो पहले

0: Era shoved the bola. Baba Samne. Me shoved the bola. Atma Samne. Ye nature or natural banao.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

serak.

और सत्य।

और तीसरा खाता है पुण्य

जो भी सेवा करते हैं, चाहे मानस से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध में,

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: उससे ज्यादा

It's Jesse.

Listen.

Hablo José Pierto. What's up?

York. Tiene

Ist alle Bauch.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ब्रह्मा बाप के पुराने बच्चों के वृद्ध ये बोल रहे कि अगर कोई कहता है कि शिवा है ही नहीं, बहुत करती है लेकिन शिवा दिखाई नहीं देती है, कोई सेवा के लिए मिलता नहीं, तो ब्रह्मा बाप क्या कहता था कि जंगल भरा हुआ है और शिकारी कहे कि शिकार नहीं मिलता, ये हो सकता है शिकारी को परखने की शक्ति देखने की वो जो तीस आंख चाहिए वो नहीं, बाकी जंगल में शिकार नहीं हुई हो ही नहीं सकता, कितनी संख्या बढ़ रही है, चाहे छोटा गांव है चाहे बड़ा शहर है, सब जगह संख्या बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है और सेवा नहीं हो ये कैसे हो सकता। या करने की फिति नहीं आती।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा यही चाहते हैं कि ये पूरा वर्ष जैसी समझे मास चलती है, लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को संतुष्ट रहो और दूसरे को भी संतुष्ट करो। इस सीजन का स्वमान है संतुष्ट मणि, सदा संतुष्ट मणि। भाई भी मणि है, मना नहीं होते, मणि होते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: एक सेकंड।

Stikke. Må ligge på den. See, bunch of.

six men. Nastik araw. Isli.

0: सेकंड में क्या से क्या हो जाएगा? इसलिए बाप दादा पहले से
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाबा सबको लगा रहा
2: प्यारे प्यारे बाप दादा सबको बिंदी का तिलक दे रहे हैं। सुंदर दृश्य आप

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: स्वभाव संस्कारों को सेवा के समय देखो ही नहीं, देखते है ना इसने ये किया, इसने ये कहा, सफलता दूर हो जाती, देखो ही नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ जी, और बहुत अच्छा, ये तो शब्द हर कार्य में यूज करो। स्वभाव वैरायटी है और रहने भी है। स्वभाव को देखा तो सेवा कदम बाबा करा रहा है। बाबा को देखो, बाबा का काम है, इसकी छुट्टी नहीं है बाबा की। तो बाप में तो स्वभाव नहीं है ना, तो स्वभाव देखने नहीं है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अगर आपका व्यर्थ समय और संकल्प बच गया तो आपका दिन कैसे बीतेगा? सदा खुश नसीब और खुश निमा बन जाए तो अभी संकल्प को अमृत वेले बाप दादा से मिलन मना के बाद ये रोज स्मृति में लाना और सारे दिन में बीच बीच में चेक करना, बाप दादा टाइम फिक्स नहीं करते लेकिन आप अपना टाइम फिक्स करो, बीच बीच में चेक करना तो जो बाप दादा के आगे बर्थडे पर वायदा किया वो चाहते तो सभी है। बाप दादा आज शिकले देख रहे हैं, चाहते हैं करेंगे करेंगे करेंगे लेकिन ये वेस्ट आ जाता है ना, तो बाप से किया हुआ वायदा भी बुला देता है। वेस्ट कदम एक मिनट अभी भी एक मिनट पावरफुल।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज की दुनिया में मेजॉरिटी आत्माएं देखने और सुनने से थक गए, लेकिन
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप शिवा के बिना रहते रहते याद के बिना भी नहीं रहता। जितना बाप याद में रहता उतना आप मेहनत से रहते हैं, लेकिन मेहनत से अटेंशन से। और बाप के लिए है या परम आत्मा के लिए है, आत्मा नंबर वन आत्मा तो है स्वयं बच्चों के याद के बाप रह ही नहीं सकता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सहज चम

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी समय अनुसार तीवर पुरुषार्थी बनने की आवश्यकता, तीवर पुरुषार्थी बनने के लिए कुछ भी आवे, मेरे को तेरे में दे।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा, ये रायल रूफ के मैमे के गीत बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वो ही ठीक है, मैंने जो सोचा वो ही ठीक है, वो ही होना चाहिए।
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: थोड़ा सा

आश्चर्य की बात रहा। इसलिए पुरुषार्थ का समय अभी मिला हुआ है। उस समय प्रैक्टिकल करने का समय तो अभी से।

Чарат кит на сети.

Bobby.

सफल

Свастику.

सफलता मुहूर्त बनने

Jones.

Yoga aquí.

समय सफलता

तबीयत में पूरा समय स्वस्थ रहते, बीमारी का नाम नहीं। डॉक्टर्स की डिपार्टमेंट ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स क्या बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे ना, विश्व के मालिक बन जाएंगे। लेकिन इस समय आप श्वास सफल करते हो और सर्वात्माओं को स्वस्थ रहने का प्रारब्ध प्राप्त होता है। ऐसे ही ज्ञान का खजाना उसका फल स्वरूप स्वर्ग में आपके अपने राज्य में समझदार शक्तिवान बन जाते हैं, जो वहां कोई वजीर से राय लेने की आवश्यकता नहीं, स्वयं ही समझदार।

Top Shop.

0: पूजन करते हैं तो क्या महिमा करते हैं। सर्वगुण संपन्न तो इस समय के सफल से संपन्न हुए लेकिन स्वप्रत व विश्वप्रत कितना सफल किया।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Yeah.

சந்தோஷம் மடினா. சுயம் கோபி பெரிய பாப் கோபி பெரிய.

Sana.

Shit.

जो संतुष्ट रहते हैं उसकी निशानी सदा परसों

some

0: Jan. अद्भुत
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ये स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के सेवा

0: सब समर्थ नहीं। समर्थ के साथ साथ सर्व समर्थ्या बच्चों को वरदान में प्राप्त।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सेवा तो करी, लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट है और साथ
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: वाचा की सेवा भले करो, तुम दाम से करो, लेकिन
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अमृत वेले से लेके जब उठते हो तो परमात्म प्यार में लवलीन होके उठते हो, परमात्म प्यार उठाता है दिनचर्या की आद, परमात्म प्यार होता है, प्यार नहीं होता उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय

रात सोएंगे और साथ चलेंगे, सोना भी अकेला नहीं है, अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न व बुरी ख्याल स्वप्न में भी आती, लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहती है मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। तो उठे उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ।

जाते हो, बिजनेस करते हो, तो भी बिजनेस का आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक बाप है। दफ्तर पे जाते हो तो आप जानते हो,

भी बन जाते हैं। कभी प्रेम में रोते हो आंसू तो पाप पूछने के लिए भी आते हैं। और आपके आंसू दिल के डबी में मोती समान समा देते। अगर कभी कभी नटखट हो के रोज भी जाते हो, रोजते भी हो बहुत मीठा मीठा, लेकिन पाप रोसे हुए को भी मनाते आते। कोई बात नहीं बच्चे, आगे बढ़ो, जो कुछ हुआ बीत जाओ, भूल जाओ, बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी। तो हर दिन चिड़िया किसके साथ है? बाप दादा के साथ।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कैसा भी कोई हो, लास्ट हो, उसके प्रति भी सदा उसको आगे बढ़ाने के लिए एक दो को स्वभाव के दृष्टि से देखो। हर एक का स्वभाव है, लास्ट नंबर का भी स्वभाव है। कोटो में कोई तो है, प्रेसिडेंट से तो अच्छा है, पहचाना तो है, मेरा पापा तो कहते हैं। और सम्मान में रहो और सम्मान दो, एकता लास्ट नंबर पे एक बाबा का बच्चा है। बाबा को सामने लाओ, उसके गलती को सामने नहीं लाओ। परिवार का है, उसमें उमंग लाओ, उत्साह लाओ। चलो गलतियां भी करते हैं, बाप दादा को मालूम है क्या क्या गलतियां करते हैं, वो छिपती नहीं है। लेकिन हर एक अपने आप से पूछे, मैं ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार बना क्यों? लक्ष्य क्या? जो लक्ष्य रख गया है, सिर्फ अपने को बचाने का नहीं, दाल रोटी संगठन अच्छा, ब्राह्मण जीवन किटराग से सेफ हो गए, इस लक्ष्य से नहीं है। लक्ष्य बहुत अच्छा लिया है, लेकिन अभी कहाँ कहाँ लक्ष्य और लक्षण में अंतर आ गए। बाप दादा को सब पता है, सिर्फ नाम नहीं लेते। कभी वो भी समय आएगा, जो करता है बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी संग दोष में बहुत आते, दिल भी खाती है, करना नहीं चाहिए, लेकिन संग का रंग, बाप के संग का रंग कम लगा है, इसलिए वो रंग लग जाता। बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को प्यार देख कर कहते हैं कि अपना वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ। संग दोष पे नहीं हो। आज होली है ना, तो जो संग दोष में आ जाते हैं, टेम्पटेशन है, आपका दोष में नहीं है। हद तक के प्राप्तियों के आकर्षण में नहीं है, क्योंकि बाप दादा को तरस पड़ता है कि कहता है मेरा बाबा, और करता क्या। इसलिए आज होली का दिन है, ऐसी ऐसी बातें समझदार बन के चला दो। फिर भी टॉयलेट के बोर्ड से
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी बाप दादा यही हर बच्चे से

जब मेरे को तेरे में बदल दिया तो आप क्या हो गए? आप हो गए बेफिक्र बादशाह। ये बेफिक्र बादशाह

के हर एक बच्चा।

So

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी सर्वात्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है, तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा का चाहे बोल से कोई सहयोग दो, चाहे समन संपर्क से सहयोग दो। तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन याद रखो, सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कम से कम जो भी आवे संपर्क में, संबंध में भी, कोई ना कोई तो संबंध में आता ही है, उसको और कोई खातरी नहीं करो, लेकिन हर एक को दिल खुश मिठाई जरूर खिलाओ। ये जो यहां भंडारे में बनती है वो नहीं, खुश कर दो तो दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खिलाना। खिलाएंगे उसमें तो कोई मेहनत नहीं है, ना टाइम एक्स्ट्रा देना है, ना मेहनत है। शुभ भावना से दिल खुश मिठाई खिलाओ, आप भी खुश, वो भी खुश, और क्या चाहिए। तो खुश रहेंगे और खुशी देंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई बच्चे कहते हैं कि हम कई बार अनुभव करते हैं कि कभी कभी जब कोई शक्ति चाहती है ना, तो उस समय पर शक्ति नहीं आती। वैसे शक्ति है, लेकिन समय पर कभी शक्ति को इमर्ज करते हैं ना, तो भी नहीं आती। है मास्टर सर्वशक्तिमान, टाइटल क्या है आपका? मास्टर सर्वशक्ति। मास्टर सर्वशक्तिमान के सीट पर सीट नहीं होते। अभी दफ्तर में भी जाओ तो जो अथॉरिटी करने वाले को होगी वो ऑर्डर करेगा, तो मानते हैं ना। ऐसे दूसरा कोई कहे तो मानेंगे क्या? तो आपकी सीट है मास्टर सर्वशक्तिमान, उस सीट पर सीट नहीं होते। तो आह्वान करते भी शक्ति समय पर नहीं आती। इसके लिए बाप दादा ने बार बार कहा है, अपने मन को बिजी रखो, कभी किस शक्ति को सारे दिन में इमर्ज रखो, कभी किसी शक्ति को इमर्ज करके देखो कि उसकी ताकत क्या है। ऐसे अनुभव करते रहेंगे अपने सीट पर से
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: लगता है अपने को चेक करना मुश्किल लगता है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे, धरती गगन हो मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने सुना, जो बाप दादा ने संस्कार उसके साथ साथ कोई एक भिन्न भिन्न संस्कार से एक संस्कार के ऊपर अटेंशन साथ साथ उसी समय ये भी रिजल्ट बाप दादा को दो। अगर मानो आप चाहते हो लेकिन उस दिन आपके सामने कोई संस्कार मिटाने का कार्य नहीं हुआ, तो अपने आप को बाप की मुबारक देना और रोज ऐसे बाप की मुबारक विशेष इस संस्कार व्रत लेती जाना, तो संस्कार कार्य में आने में कमी पड़ती जाए। तो जैसे योग के बारे में चेक करते हो वैसे संस्कार के लिए रोज आता नहीं है, कभी कभी आता है। जो पुरुषार्थी है उनका पाया इसके पीछे लग जाएंगे ना, रोज चेकिंग करेंगे ना रिजल्ट, तो संस्कार स्वयं ही ढीला हो जाएगा। और जो बाप दादा चाहता है संस्कार के सब्जेक्ट में नंबर वन जाओ, जो संस्कार चाहते हो वही कार्य में लगे।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Tjärnor.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सभी बच्चे

loves.

маслины. Чё, бабки, боль? Опа, чё, бабки, боль? Чё, бабки, боль?

अब ये आप बाप समान बच्चों को नमस्ते करेगा।

0: Hesse. Bob Gibbard. Lekin sırf çek karna. Koyl
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: परिवार में भी निश्चय अति आवश्यक है, क्योंकि इतना बड़े परिवार विश्व में किसका है। आप जितना परिवार चेक करो विश्व में किसका है। परिवार के

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है। सारे दिन में ये ड्रिल करो, मन की ड्रिल, शरीर की ड्रिल, तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए करते हो करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। वो तो करो और खूब करो, टाइम पर सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना, कि टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। जब बाप समान

स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति बाप समान कार्य करते फ्रिश

हो सकता।

0: us? Our attention chalte firte karam karte beech beech mein karte jana to ye practice mansa seva karne mein bhi sahyog denge.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: शॉट इकट्ठा इसीलिए किया जाता है कि एक दो के नजदीक होने के कारण एक दो को सहयोग देना सहज हो जाता है। तो ये भी सहयोगी बनना मेरी एरिया नहीं, सब मेरी आवश्यकता जहाँ है वो मेरा, चाहे सोन नाम अलग अलग है, लेकिन

0: जहाँ आवश्यकता है, आवश्यकता के समय सहयोग देना ये महापुण्य है। अगर अपना पुण्य का खाता जमा करना है तो सहयोगी बनो और सेवा को और चार चांद लगाओ। ये बाप दादा को अचल तो इस संगठन को बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहेंगे ना, हाथ उठाओ, बढ़ाएंगे ना। सभी ने उठाया, हम सब एक है। ये तो सेवा के कारण कोई देख रेख हो सके, इसके कारण जोन बना है। बाकी एक ही है, एक ही रहेंगे, एक के है, एक के रहेंगे।
1: आप

0: Yoshi Menasne की और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की तो नाचने गाने वाले जो होते हैं ना, वो अगर ऐसा गंभीर होके नाचे तो कहेंगे नाचना नहीं आता। गंभीरता अच्छा है लेकिन टू मच गंभीरता थोड़ा सा सोच विचार का लगता है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कभी कभी लिफ्ता बन जाए, ये हो ये करे ये मदद दे ये बदले तो मैं बदलूं, ये बात ठीक हो तो मैं ठीक हूँ। ये लेफ्टापन दातापन नहीं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: नंबर वार तो है, अच्छे भी है, तो साथ में किट-किट वाले भी है, लेकिन ये ऐसा है वो समझना अच्छा है, जो रंग है उसको रंग समझ।

तो जा खराब चीज है, वेस्ट थॉट्स है।

0: अच्छा नहीं है ना, एक तरफ अच्छा नहीं है कह रही है, दूसरे तरफ संभाल के रख रही है, तो इसको क्या कहें? अच्छा कहें? अच्छा तो नहीं है ना। तो आपको क्या बनना है? अच्छे थे अच्छा ना, अच्छा भी नहीं, अच्छे थे अच्छा। तो जो भी कोई ऐसी बात हो ना, बार बार पाप हसर हसूर है, उसको दे दो। और अगर वापस आवे तो अमानत समझ के फिर दे दो। अमानत में खयानत नहीं की जाती, क्योंकि आपने तो दे दी तो पाप की चीज हो गई। पाप की चीज या दूसरे की चीज आपके पास गलती से आ जाए, आप अलमारी में रख देंगे, निकाल लेंगे ना, कैसे भी करके निकालेंगे, रखेंगे नहीं, संभालेंगे तो नहीं ना। तो दे दो, पाप लेने के लिए आए, और तो कुछ आपके पास है नहीं जो दो, लेकिन ये तो दे सकते हो ना। आग के फूल है वो दे दो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी समय पर मान सब अचानक होना है, पता के नहीं होना है। जैसे अभी प्रकृति का अचानक चल रहा है, आरंभ हुआ है। अभी नई नई बातें, अचानक अर्थक्वेक हुआ, थोड़े समय में लाखों आत्माएं चली गई। क्या उन्हों को पता था कि कलम हो गई या नहीं? ऐसे कई एक्सीडेंट बिना स्थान पर अचानक होना आरंभ हो गए हैं। इकट्ठे के इकट्ठे एक समय अनेकों की टिकट कट रही है। ऐसे समय
4: कर रहा हूं, एवर रेडी अर्थ।

0: इस बात पर अटेंशन दिला रही है, किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान या स्वभाव के स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो, बनना ही पड़ेगा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: समय की डेट नहीं देखो, 2000 में होगा, 100, 2001 में होगा, 5 में होगा, ये नहीं सोचो। चलो एवरेडी नहीं भी बनो, लेकिन इसको भी बाप दादा छोड़ देते हैं एवरेडी को। लेकिन सोचो, बहुत काल के संस्कार तो चाहिए ना। आप लोग ही सुनाते हो कि बहुत समय

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।